मिली में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज तथा 104 मेगाहर्ट्ज एफएम पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 अगस्त महीने की 24 तारीख दिन है सोमवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्रीमती सांगे चोमू, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री कामे यांगफो और श्री लाम सिंह, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री आमल कुमार दास, मोनपा में उद्घोषक हैं श्री लोपसांग तोपदेन तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज का हिंदी उद्घोषक लाम टाशी। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

हैं। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी एवं हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा।

0: river has risen above the danger mark at all major ghats in Patna. In view of the worsening flood situation, Chief Minister Samrat Chaudhary spoke to West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari over the phone and apprised him of the gravity of the situation. West Bengal Chief Minister has assured prompt action in this regard. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
1: The Indian Meteorological Department, IMD, has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, Bihar, Odisha, East Madhya Pradesh till tomorrow. In cricket, India resumed their innings after lunch against host Sri Lanka in the day two of the second and final test in Colombo. India were 471 for 8 when reports last came in. Rishabh Pant, returning after retiring hurt on day one, battled through a barrage of short balls to remain unbeaten on 63, while Dhruv Jurel made 59 to power India through 419 for 6 at lunch. Devdutt Padikkal continued his impressive form, scoring his second consecutive test century. He made 117 off 193 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says India is negotiating free trade agreements with 8 to 9 more groups of countries. Supreme Court issues notice to centre on plea seeking CBI probe into JPSC exam irregularities. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi this evening. External Affairs Minister S. Jaishankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. And in Test cricket, India holds strong position against Sri Lanka with 471 runs in the first innings at Colombo. Devdutt Padikkal smashes 117 runs. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से को अपने दायरे में लाने के लिए 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
3: We have about 80 companies.
4: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
3: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनूरु में आगो

0: में पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
1: I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Fasal Bima Yojana, Kisan Credit Card schemes and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management, and farm mechanization assistance and field demonstrations for maize farmers.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय यह सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
2: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
3: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने यह समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
4: मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपने को हम साकार करेंगे।
0: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना पीएमएफएमई से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज पीएमएफएमई सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
5: पीएमएफएमई की हमारी स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दें।

0: करने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटी प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है, और आज जो हम लोगों ने MOU साइन किए हैं अपीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और GCC के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण

0: आंध्र कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंड इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे अनूप जलोटा के आवाज में चंद हिंदी भक्ति नगमे। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

अनुप जलोटा के यानी हिंदी भक्ति नगमों के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे अरुण जमातिया, जाशुआ हालम, प्रियंका और साथियों की आवाजों में चंद आधुनिक कोक बोरोक नगमे। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं भी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत अरुण जमातिया, जाशुआ हालम और प्रियंका से चंद आधुनिक कोक बोरोक नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से जारी है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे अरुण जमातिया, जाशुआ हालम, प्रियंका और साथियों से चंद आधुनिक कोक बोरोक नगमे। इसके साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 8वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी यशील हामू से एक जीवन का अनुभव, जिसमें मुझे बदल दिया विषय पर एक वार्ता।
1: दुनिया तो सिर्फ हाल पूछती है, दुनिया तो सिर्फ हाल ही पूछती है, फिक्र तो सिर्फ अपने माँ बाप करते हैं। ताशी दिले आप सभी को, मैं यशील हामू पीएम श्री जीएनवी तवांग कक्षा 8वीं की छात्रा, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय है एक जीवन का अनुभव जिसने मुझे बदल दिया। माँ और पिता हमारे जीवन के दीपक होते हैं, जो अंधेरे में भी सही रास्ते दिखाते हैं। जब वे हमारे साथ होते हैं तब हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जब वे इस संसार से विदा हो जाते हैं तब जीवन की असली परीक्षा शुरू होती है। माता पिता के मृत्यु के बाद जीवन अचानक बदल जाता है। पहले जिन बातों में उनकी सलाह मिलती थी, अब उन फैसलों को बोझ हमें खुद उठाना पड़ता है। यह अनुभव बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन यही अनुभव हमें मजबूत बनाता है। माँ और पिता केवल हमारे जन्मदाता ही नहीं होते, वे हमारे पहले गुरु और सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। जब हमारे साथ होते हैं तब हम उनकी मौजूदगी को सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन जब वे इस संसार से चले जाते हैं तब उनके जीवन और संघर्ष का असली महत्व समझ आता है। माता पिता की मृत्यु मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक क्षण था। ऐसा लगा जैसे जीवन की दिशा ही बदल गई हो। हर कदम पर उनकी कमी महसूस हुई, लेकिन समय के साथ मैंने यह समझा कि वे हमें कमजोर दिखाने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं। जब तक वे हमारे साथ रहते थे तब तक हमें उनके महत्व का पूरा एहसास नहीं होता, लेकिन जब वे इस संसार से चले जाते हैं तब जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है। जब मैंने अपने माता पिता को खोया तो ऐसा लगा जैसे मेरा सहारा छिन गया हो। उनकी आवाज, उनकी सलाह और उनका प्रेम हर पल याद आने लगा। इस दुख ने मुझे गहराइयों से तोड़ दिया, लेकिन इसी दुख ने मुझे जीवन को समझने भी सिखाया। इस अनुभव ने मैंने सबसे पहले सीख यह ली कि समय बहुत कीमती होता है। हमें अपने माता पिता के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए, उनसे प्रेम से बात करनी चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। अक्सर हम व्यस्त जीवन में उन्हें समय नहीं दे पाते और बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। माता पिता की मृत्यु ने मुझे जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। अब जीवन के हर निर्णय मुझे स्वयं लेने पड़ते हैं। उनकी अनुपस्थिति में मैंने सीखा कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने जो संसार दिया है वही आज मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस अनुभव ने मुझे दूसरों

0: एक दुख को समझने की हिम्मत भी दी। जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलती हूँ जिसने अपने माता या पिता को खोया है, तो मैं उसकी दर्द को महसूस कर पाती हूँ। इससे मेरे अंदर करुणा, संवेदनशीलता और मानवता की भावना और मजबूत हुई होती है। इस दुख से मैंने सीखा कि जीवन में कोई भी स्थायी नहीं है। हमें हर रिश्ते की कदर करनी चाहिए। माता पिता हमें बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। उनका त्याग और संघर्ष हमें अवसर दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी हर छोटी बात याद आती है। माता पिता भले ही आज हमारे साथ शारीरिक रूप से ना हो, लेकिन उनकी सीख, उनके संस्कार और उनके सपने हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उनका सच्चा सम्मान यही है कि हम उनके बताए मार्ग पर चले और एक अच्छा इंसान बने। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ पिता का प्रेम जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हमें उनके जीवन रहते ही उनकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि उनके जाने के बाद केवल यादें ही शेष रह जाते हैं। मुझे छाव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मुझे छाव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा एक फरिश्ता अपने माता पिता के प्रेम में। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 8वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी यशील हामू से एक जीवन के अनुभव, जिसने मुझे बदल दिया विषय पर एक वार्ता।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
3: चलो,
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:36 हुए हैं। श्रोताओं, सुनिए महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए चक दे इंडिया फिल्म से हेमा सरदेसाई की आवाज में, बोल जयदीप सैनी के और संगीत सलीम सुलेमान का।

अगला नगमा सुनिए कविता सेठ की आवाज में। निर्जा फिल्म के इस गीत को लिखा है प्रस्तून जोशी ने और संगीत से सवारा है विशाल खुराना ने।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से अभी आप सुन रहे थे नारी संगीत कार्यक्रम का अंतिम नगमा श्रेया घोषाल, उदित नारायण और विशाल शेखर की आवाजों में। अन्विता दत्त के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है विशाल शेखर ने। इसके साथ ही श्रोताओं, महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत अब समाप्त होता है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:51 हुए हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी।

श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का पहला नगमा पेश है लव आजकल फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है प्रीतम ने।

0: जवानी जानी मन तुमसे भी आप सुन रहे थे देवशी कुंडारी का लिखा नगमा, स्वर यासर देसाई के और संगीतकार गौरव रोशन। अगला नगमा सुनिए सुनिधि चौहान और नवराज हंस की आवाजों में। दे दे प्यार दे फिल्म के इस गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत दिया है विपिन पतवा ने।
1: We are controlling transmission.

0: श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत फिल्म जगत के चंद नव गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अगला नगमा सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरुणाचल प्रदेश के क्रिएटर्स सुनो, आपके होम टाउन की वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल है। पहाड़, कल्चर, खाना, ट्रेडिशंस और ढेर सारी स्टोरीज। अब टाइम है अपनी स्टोरी को इंडिया की स्टेज तक ले जाने का। जुड़िए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज से और बनाइए 1 से 3 मिनट की वीडियो जो बताए कि आपका जिला कितना यूनिक है। और हाँ, प्राइज भी जबरदस्त है। डिस्ट्रिक्ट विनर्स 50,000, स्टेट विनर्स 2 लाख रुपए और नेशनल विनर्स 5 लाख रुपए। बस वेव्स OTT पे रजिस्टर करें, माई वेव्स पर जाकर क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और अपनी वीडियो सबमिट करें। अरुणाचल के क्रिएटर्स, कैमरा उठाओ और अपनी स्टोरी दिखाओ।
0: अगला नगमा सुनिए तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह की आवाजों में। आशिकी 2 फिल्म के इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है जीत गांगुली ने।

कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए न्यूयॉर्क फिल्म से के और साथियों की आवाजों में। संदीप श्रीवास्तव के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का अंतिम नगमा पेश है नीति मोहन की आवाज में। जब तक है जान फिल्म की इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

श्रोताओं आप सुन रहे थे चांदनी कल्याण राग पर निषद खान से सितार वादन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। श्रोताओं आपसे चंद

0: मुख्य समाचार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से को अपने दायरे में लाने के लिए 8 से 9 और देशों के समूह के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन में भाग लेंगे। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन जी सेक्टर स्थित सरकारी माध्यमिक विद्यालय की प्रधान अध्यापिका तमिल याकू का चयन राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2026 के लिए किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग खेल एवं युवा मामलों के सचिव आबुतायंग ने सभी से जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में भाग लेने और राष्ट्रीय मंच पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने का आह्वान किया। असम राइफल ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में तिरप जिले के न्यू पानीदोरिया में सामान क्षेत्र से NSCNIM के एक सक्रिय कैडर को गिरफ्तार किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत, ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से विश्व व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को विश्व मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तक अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापारिक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों के अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा है कि बढ़ते आर्थिक संबंध और भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे।
1: We have about 80 companies.
2: हमारे प्रतिनिधि मंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधि मंडल की विविधता को दर्शाती है।
1: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित की जाएंगी।
3: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार।
0: अरुणाचल प्रदेश के जी सेक्टर नाहरलगुन स्थित सरकारी माध्यमिक विद्यालय की प्रधान अध्यापिका तमिल याकू का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में 42 वर्षों की समर्पित सेवा, विद्यालय के विकास और निशी भाषा को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रधान अध्यापिका तमिल याकू को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार और जिला शिक्षक पुरस्कार भी प्राप्त है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितम्बर 2026 को शिक्षक दिवस के अवसर

0: नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगी। इस वर्ष 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्र संगठनों के में 48 उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षकों का इस सम्मान के लिए चुना गया है। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल है। अरुणाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग खेल एवं युवा मामलों के सचिव आबू तायंग ने अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय फिल्म निर्माताओं, कलाकारों, कंटेंट क्रिएटर्स और कहानीकारों से जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में भाग लेने और राष्ट्रीय मंच पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने का आह्वान किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस चैलेंज में कंटेंट क्रिएटर्स, ब्लॉगर्स, फिल्म निर्माता, फोटोग्राफर्स, विद्यार्थी, इन्फ्लुएंसर्स और वीडियो या ऑडियो के माध्यम से कहानी कहने की रुचि रखने वाले कोई भी व्यक्ति भाग ले सकते हैं। इस पहल के तहत जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक के नकद पुरस्कार जीतने का अवसर मिलेगा। इसके तहत चयनित प्रतिभागियों को अपने कार्यों के व्यापक राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने और अपनी रचनात्मक प्रतिभा के लिए पहचान हासिल करने का अवसर भी मिलेगा। प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। असम राइफल्स ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में तिराप जिले के न्यू पानीदुरिया में सामान्य क्षेत्र से NSCNIM के एक सक्रिय कैडर को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 31 वर्षीय वंगचैन वांगसू के रूप में हुई है, जो खुद को NSCNIM सेल्फ स्टाइल्ड प्राइवेट बताया है। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने उसके कब्जे से एक पिस्तौल, एक मैगजीन और 32 mm के 5 लाइव कारतूस बरामद किए। बरामद अन्य आपत्तिजनक सामग्री में 5,550 रुपए नकद, अलग अलग व्यक्तियों के 3 आधार कार्ड, एक मतदाता पहचान पत्र, फोन नंबरों की एक सूची तथा चार्जर सहित एक टॉर्च लाइट भी शामिल है। गिरफ्तार कैडर और बरामद चीजों को आगे की जांच तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वीं भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई निश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार।
0: ब्रिक्स शेरपा विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर डलीला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच को उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री डलीला ने कहा है कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलाशय में मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम अरेस ने बताया है कि यह शुल्क समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करता है। रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्धता कराना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल का स्वच्छ बनाए रखने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
2: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका।
0: कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के बाद दोबारा शुरू हुआ। ताजा जानकारी मिलने तक भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 499 रन

0: 所感染这条路热点音波，一直播到做海北电信两个人台北的事业，那修改热点音波，一直过今年配了人家正个当隔壁跟个有音波，另跟个有音波，就等个当台湾的也在 case 忙的上音波，现在来到到做的是第二个就多少时间跟你准备同样人的摩托音波，也不但爱的是同时做不起的海 BP 高血流。이제보다더러서하이퍼텐션소매직우스틱토가로도히남나다이지코드나오메니슈글라
1: 다하이퍼텐션약간제신호니나나다크라디그이드메다크라디쉣그유조건프레셔드요그유조건디임우측야멘디나다스피크모벤노메터니야다메신디노메다메신지기체크야도메check ya ya pressure high no munujit ngatang gaya de follow ya de ne na to utko ne dokchen ya kan department yo de nom da america choka na shung ari ka ye department ne na american heart association ning ki chokpati chu ya ya na european country ka ye ti chokpati nom ngatang uso ye kya kar ka ye ne association of physician of india ni ya hypertension kadam ki chokpa chogan de yo nom to chokpa na ingi research ya do me तो रिसर्च या या को संबंधित रहना उतना से का क्यों थी रोड उत प्रेशर हाई गया हो चुकी तो उत गाइडलाइन से चेंज को नाम था
0: yes.
1: प्रेशर हाई गया ना सीरो दुनिया ना गदा गदा या निंग आ क्यों ना दाचे निंग आ क्यों निंग थेम जोंग लांग गए ये जिक शुगर ले हार्ट फेलियर नहीं ना गदा उत का गनगोक नंग हार्ट फेलियर का यो रोंग दो में हार्ट फेलियर नहीं ना तो प्रेशर हाई गया हो चुकी निंग थेम लांग गए दो में लेफ्ट वेंट्रिकल निगन जित निंग जित थेम गए दो में Tem jong lang gai chik shuk ut le ka yame tyo chike lemin nang kreng bu mata bu ji konbang ti nei lu tran kot pula bu mata bu jong lang gai dum me ti ani na chi cha lang gai dum han bakti nga dang te kan nga dang taung ne nga patient yor tin nam dang nga dang chue man ga ne nga ta dialysis no chi ki nga ri dialysis ya dum me ta kidney fail gai ho chi ut na gi msen di che khon na te pule ta ma shu di pressure chi ke ran ni me pressure high su chi to me yor di pressure high su man ma sa yo chu ke तो प्रेशर हाई सु जे किडनी का क्यों दमे इज प्रेशर हाई ओया ना सु ने सु मे लोंग आई क्यों मे लोंग मतों शों हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी ने उत का ए कॉम्प्लिकेशन तिरो तन योर थिंग आता सीटी तों दो ने ना स्ट्रोक पेशेंट ने दमे स्ट्रोक ने ना ए स्ट्रोक ना का नहीं रो दम लत पने गा प्रेशर हाई गे या लत पने गा खरा दे लंग गे चति मन गे या खरा गे दमे इज स्ट्रोक लंग गे पेले शों लंग गे बाकी प्रेशर योर हाई तुमने योर से ना खरा दी गर्भ चौंलांग गए इच गर्भ चित खरा चित लपने का देलांग गए ना घूमे मोशों को चुक पहले चौंलांग गए तुम्हें इच उत्ते पुले गायांग गए ना प्रेशर चिकी नादांग नादांग ये क्यों नियोर दी रोग चिकी ना चीन ये तुम्हें प्रेशर चिक कंट्रोल या निगोसु खादो यम
0: निया नेस डॉक्टर सब Pang Christian Motor Data, when our patient Doma, not Buddha, in our name, Honumbur, we had my daughter, now name, Honumbur, hypertension, you also the high blood pressure, Tsukida, Matang, Mouth, the Kangati, at the Honumbur, Yabuta Utsu, Tangata Gungatra, people Nasha Rashanova, Shunba Nasha Nova, Pisho Nasha, Tangata Susha Rashano in them.
1: The Oren Yena, the patient Yakanji, Naka Nika, Sinu Nome, Nada Cheng, Atang, Kyarakit, Kanyena, primary Yena. Primary hypertension ni dum da primary hypertension jit kaya ro du ni da ngata ta phama gyu ya ya pakti singa da phama nan se rene onu nan se rai chok nu o ye ti chong lang gai dum pakti ngata africa shok mi nan se ta race ni na bishe mang sho di ton dum pakti da mang sho di desh no sit ni na ta lifestyle jit ngata sadan kya dan ki kyun ra su ji ki shel mang kra o ngata weight mang kra o ji ki obesity ji ki ut ki kyun ra su ji bp high lang chong lang gai dum तन उत्सेगा गादम बाते म्यूबिसिना ओनु खोकोने गा रोपुले प्रेशर हाई गे दुमे प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन निया उत प्रेशर हाई सुगो जे ओनु के सर पुले चेक अप माया ना शुक पिदिए प्रेशर हाई सोंग ओय रो दुमे त ओनु नासे मोर दु निया ना ओय मोर दुमे सियानि ना सेकेंडरी हाइपरटेंशन निया त ना दा जे प्राइमरी हाइपरटेंशन एसेंशियल हाइपरटेंशन गादम सदान खेदा न्या रिक निया ना त इच गुमजन छि गे रो दुमे त सेकेंडरी हाइपरटेंशन गे जन्म न फियोक्रोमोसाइटोमा निया यामिना कोन सिंड्रोम निया अल्डोस्टेरोन हाई गया इच किडनी ने चाटी गे उत ब्लॉक या गे ना रिनो वास्कुलर डिजीज उत की ए प्रेशर हाई तो उत उनुना जे रह चो नम त देश नो सि ने ना उनुना ए मांशो दी गतां स्नैक्स नांग क्यो जंक फूड नांग मांशो के शे चित मांशो ने तंगरा रंगा दी टोंपले दी द क्लास 10 बुचुना ना प्रेशर हाई जोंग एन गतां उसो ए द तुमने खली वंग शोम नहीं लो रे रंग डायलिसिस या कन शोम लंग एम सी यानी ना प्रेशर हाई नोम में बिशे तो प्रेशर हाई ची की बिशे किडनी थी क्यों ना सुनो में तो ना दा ची ना ककदाम ची ना दा सदान के दान ची ना उन्ना या हिंग्या या प्रेशर चिक चिक या तो अन मन का मन से ये चिक प्रेशर

मिरिमिफ 97.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज और 104 मेगाहर्ट्ज एफएम पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में पहले सुनिए एक जरूरी सूचना। अरुणाचल प्रदेश सरकार कार्यपालक अभियंता कार्यालय शहरी विकास विभाग डूडा तवांग द्वारा इच्छुक बोलीदाताओं से ओल्ड मार्केट मानी में स्थित कैफेटेरिया को मासिक किराए पर देने के लिए सीलबंद कोटेशन आमंत्रित किए गए हैं। कोटेशन फॉर्म 24 अगस्त 2026 से आगामी 24 सितंबर 2026 तक उपलब्ध होंगे। भरे हुए फॉर्म आगामी 24 सितंबर 2026 को दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकेंगे, जिन्हें उसी दिन दोपहर 3:30 पर खोला जाएगा। आवेदन के साथ अनुसूचित जनजाति यानी एसटी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की जेरोक्स कॉपी और होटल या कैफे का वैध ट्रेडिंग लाइसेंस भी संलग्न करना अनिवार्य है। कैफे का न्यूनतम आरक्षित किराया है 10,000 रुपये प्रति माह। सफल बोली

आवेदन के साथ अनुसूचित जनजाति यानी एसटी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की जेरोक्स कॉपी और होटल या कैफे का वैध ट्रेडिंग लाइसेंस भी संलग्न करना अनिवार्य है। कैफे का न्यूनतम आरक्षित किराया है 10,000 रूपए प्रति माह। सफल बोलीदाता को स्वीकृति के बाद 50,000 रूपए सुरक्षा राशि जमा करना होगा। चुने गए बोलीदाता के साथ एक वर्ष की अवधि के लिए समझौता हस्ताक्षर किया जाएगा। साथ ही कैफे की मरम्मत और रखरखाव का सारा खर्चा सफल बोलीदाता को उठाना होगा और विशेषकर तवांग जिले के स्थानीय आवेदकों को प्रथम प्राथमिकता दिया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप डूडा तवांग के कार्यालय से संपर्क करें। सूचना समाप्त हुआ। आइए अब आपको हमारे केंद्र के आज के शेष एवं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या के 6:20 पर मोनपा में कार्यक्रम शेदोन लेरिम में सुनिए आनी थुतन चोसांग से चंद बौद्ध भक्ति भजन। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7 बजे तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर कृषि संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण में सुनिए कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के होम साइंस विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या पांडे से पोषण वाटिका विषय पर हुई भेंट वार्ता। वीर सैनिकों पर आधारित कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत में आनंद लीजिए चलते चलते फिल्म से अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक, मैं हूं ना फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल और कयामत से कयामत तक फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे आज शाम 7:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत में सुनिए 72 आवर्स फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8 बजे आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर और न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे। श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। चलिए अब आपको कल यानी 25 अगस्त 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाने की तरह कल दोपहर 2 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार 2:15 पर। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए गेलोंग नवांग शाक्या और साथियों से चंद बौद्ध भक्ति भजन कल दोपहर 2:30 पर। चंद आसामी फिल्मी नगमों का आनंद लीजिए दीपेन बरुआ के आवाज में कल दोपहर 3 बजे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात में सुनिए पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग की 11वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी पेमा छोकी से खेल और क्रीड़ा विषय पर एक वार्ता। महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत में आनंद लीजिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से श्रेया घोषाल, उदित नारायण और विशाल शेखर, जब वी मेट फिल्म से श्रेया घोषाल, वेकअप सिट फिल्म से कविता सेठ और ऊंचाई फिल्म से अभिजीत श्रीवास्तव के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे दोपहर 3:33 पर। कल दोपहर 3:50 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी में सुनिए दम लगा के हैशिया फिल्म से पापुन, सुई दागा फिल्म से रोंकिनी गुप्ता और पापुन, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल, गदर 2 फिल्म से अरिजीत सिंह और मिथुन, सत्य प्रेम की कथा फिल्म से अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार, जवान फिल्म से अरिजीत सिंह और शिल्पा राव, सैम बहादुर फिल्म से श्रेया घोषाल और सोनू निगम, एनिमल फिल्म से विशाल मिश्रा, डंकी फिल्म से अरिजीत सिंह और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म से सचिन जिगर, राघव चैतन्य और वरुण जैन के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे। शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग में सुनिए उस्ताद अली।

अकबर खान से सरोद वादन कल शाम 4:30 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 4:45 पर तथा अंग्रेजी में समाचार शाम 4:55 पर। रोजाने की तरह ममपा कार्यक्रम नमथर लेरिम में सुनिए गेशी थुपतेन गेंदुन जी से वास्तविकता की प्रकृति पर आधारित महायान बौद्ध धर्म के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र ग्रंथ दोर्जी छोयपा का 6 भाग कल शाम 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में। कल शाम 5:35 पर साप्ताहिक मोनपा कार्यक्रम दांगपोक समा लेरिम सेडा शाम 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। बौद्ध भक्ति वंदना का कार्यक्रम यदुन लेरिम में सुनिए अमाल हम ड्रमा और साथियों की आवाजों में चंद बौद्ध भक्ति भजन कल शाम 6:20 पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता में सुनिए मोन्यूल विद्या निकेतन विद्यालय तवांग के 5 कक्षा की विद्यार्थी श्री दीवांग गोगोई से एक हिंदी कविता। फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से मैं आनंद लीजिए आशिकी 2 फिल्म के चंद नगमे कल शाम 7:11 पर। कल शाम 7:25 पर सुनिए साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमी तराने में सुनिए केसरी फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8 व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर तत्पश्चात 8:45 पर समाचार संध्या तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। तो श्रोताओं ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारियां। इसके साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मोनपा में। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।

0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बिया गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई है। गृह मंत्रालय कार्यालय ने बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रस्तुति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उच्च स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक कम होकर 24,219 पर पहुंच गया। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary ERS Mayank Singh also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jayashankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jayashankar described the outcome of the Intergovernmental Commission

0: होम साइंस डॉक्टर दिव्या पांडे जी को। तो डॉक्टर मैम, हम आपका हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: थैंक यू।
0: तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे न्यूट्रिशनल किचन गार्डनिंग यानी पोषण युक्त बागवानी के बारे में, कि पोषण युक्त बागवानी क्या होता है और यह हमारे स्वस्थ व जीवन शैली के लिए क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पोषण युक्त बागवानी यानी न्यूट्रिशनल किचन गार्डनिंग क्या होती है।
1: न्यूट्रिशनल किचन गार्डनिंग जो है वो हमारा कि थ्रू आउट द ईयर आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, ये सब कैसे बैलेंसिंग अमाउंट में आपको मिले वो होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि पोषण युक्त कैसे रहेगा। मीन्स जो भी हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाने में यूज कर रहे हैं वो मिक्स करके खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, वो हमारा पोषण बागवानी जो यूज करने का मकसद ये है।
0: जी मैम, तो अगला सवाल मैं आपसे यह पूछना चाहूंगी कि आज के समय में पोषण युक्त बागवानी की क्या महत्व है।
1: पोषण युक्त बागवानी जो गवर्नमेंट की स्कीम

0: जो भी हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाने में यूज कर रहे हैं वो मिक्स करके खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, वो हमारा पोषण बागवानी जो यूज करने का मकसद ये है।
1: जी मैम, तो अगला सवाल मैं आपसे यह पूछना चाहूंगी कि आज के समय में पोषण युक्त बागवानी की क्या महत्व है?
0: पोषण युक्त बागवानी जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो ये है कि आपको थ्रू आउट ईयर वेजिटेबल्स या जो भी फ्रूट्स का सेवन हम कर रहे हैं वो आपको टाइम टू टाइम आपके प्लेट में मिलता रहे पूरा साल, और जो भी आपका वेजिटेबल्स मिल रहे हैं वो मिक्स वाले मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उस पे ध्यान देना है हमें, और वो हमारे डाइट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पर डे की जो रिक्वायरमेंट है वेजिटेबल्स की वो 300 से 400 ग्राम पर डे हमारे डाइट में वेजिटेबल्स होना चाहिए। इसी के साथ हमारा फ्रूट्स भी 100 ग्राम पर डे हर दिन आपके डाइट में होना चाहिए। तो ये जो पोषण वाटिका आपका जो गवर्नमेंट का है न्यूट्रिशन किचन गार्डन उसमें हम फुलफिल कर पाते हैं जब इस तरह से गवर्नमेंट का जो स्कीम है इसको अच्छे से सुचारू रूप से करके ढंग से लगा के एक ही क्रॉप को बार बार रिपीट नहीं करना है इसमें और इंटरक्रॉपिंग सिस्टम को यूज करना है, तो ये सब करके हम पोषण बागवानी को बहुत अच्छे से लाभ उठा सकते हैं।
1: जी मैम, जैसा कि आपने कहा कि पोषण युक्त बागवानी जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है ही, साथ ही हमारे पर्यावरण तथा हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत लाभदायक होती है।
0: अच्छा क्वेश्चन है आपका, जो पोषण बागवानी है वो स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही हेल्दी है आपका और इनकम जनरेशन का भी काम करता है क्योंकि जो थ्रू आउट ये जो सरप्लस वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है उसको हम मार्केट में ले जाके सेल करके भी एक अच्छा आमदनी का सोर्स है, हमारे लाइवलीहुड को बढ़ा सकते हैं और आर्थिक आपका जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेगा आपका एक पोषित जो है किचन गार्डन, और आपका खुद का भी जो जिसके भी घर में इस तरह का न्यूट्रिशनल किचन गार्डन अगर है तो उनके घर में भी जल्दी कोई बीमार नहीं होगा क्योंकि वो लोग मिक्स करके खा रहे हैं प्लस पर डे जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो इस नाते वो हेल्दी रहेंगे और ये अच्छा है।
1: जी मैम, तो जैसा कि हम कहते हैं कि घर में लगाई गई सब्जियां और जो फल है वह बाजार से खरीदी गई सब्जियों और फलों से कई बेहतर होते हैं तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पोषण के मामले में घर की जो सब्जी या फल है वह बाजार की चीजों से कैसे बेहतर है? मैम
0: बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, जो घर में लगाई गई सब्जियां हैं उसमें हमने पौधों को टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, जो हमारे किचन के वेस्ट हैं वो पानी उसमें जाते हैं प्लस जो हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं खाद बनाते हैं उसका यूज करते हैं, तो मीन्स की उसमें कोई भी केमिकल्स हमने यूज नहीं किए हैं, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्दी है। लेकिन जब मार्केट से खरीदते हैं तो वो एक लार्ज कमर्शियल पैमाने पे बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है उगाते हैं कमर्शियल लेवल पे तो वो अपना बहुत ज्यादा केमिकल यूज करते हैं उसमें, तो एक फार्मर्स को बार बार समझाने के बावजूद भी उनको ये नहीं पता रहता कि कितना प्रपोर्शन में हमें केमिकल यूज करना है, कितना अमाउंट में डालना है, एक पौधे को कितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे लाइक टोमेटो में एंडोफिल का बहुत ज्यादा यूज है वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में, तो बार बार जो है उनको अमाउंट नहीं पता है कि किस अमाउंट में डालना चाहिए एंडोफिल को, तो ये चीजें जो है उनको बाहर से जो ली गई वेजिटेबल्स है उस पर डाउट रहता है कि उसमें जो है उनका जो प्रपोर्शन है फर्टिलाइजर्स यूज करने का वो ठीक नहीं होगा, वो हमारे लिए अनहेल्दी होंगे, लेकिन जो हम अपने किचन गार्डन में लगाएंगे अपने खाने के लिए यूज करेंगे उसमें जो है हम उस तरह के जो नेचुरल केमिकल है उसका यूज करेंगे तो इस वजह से वो हेल्दी होते हैं।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि गांव या निम्न आय वाले परिवार यानी लो इनकम वाले परिवार है उनमें ज्यादातर लोगों में कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन की समस्या देखी जाती है, तो यदि हम पोषण युक्त बागवानी करें तो इस समस्या को कम करने में कैसे मददगार हो सकती है?
0: ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा अगर हम न्यूट्रिशन किचन गार्डन एक जो विलेज है जो कम आय वाले हैं उनके लिए यूज करें, क्योंकि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो हमारे प्रोटेक्टिव फूड है, अगर हम उसका सेवन करते हैं अच्छे से तो वो हमारे बॉडी में रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, मीन्स की हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का काम करते हैं, तो इस तरह से अगर फार्मर्स जो है अपने खेती में न्यूट्रिशन की

0: गार्डन का यूज कर रहा है, उस तरह से जो एक ऑब्जेक्टिव उसका है किचन गार्डन का किस तरह से लगाना है उसका यूज कर रहे हैं प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, तो वो निश्चित तौर पे कुपोषित नहीं होंगे और माल नरिश नहीं होंगे, वो अच्छा नरिशमेंट होगा उनका और हेल्दी रहेंगे और जल्दी उनको कोई बीमारी नहीं होगी।
1: जी बहुत धन्यवाद मैम। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि अगला जो वार्तालाप है मिस तेंजिन छुटुन जी जारी रखें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मैम जो किचन गार्डनिंग यानी पोषण वाटिका की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन समय तथा जो जानकारी के अभाव के कारण वो लोग इसकी शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति पोषण वाटिका यानी किचन गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं वो कैसे कर सकती है, यानी उन्हें किन किन बुनियादी चीजें यानी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता होंगी।
0: न्यूट्रिशन किचन गार्डनिंग करने के लिए कोई बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपका पैसा नहीं लगना है उसमें। बहुत बेसिक आपके ही जो सराउंडिंग एरिया मीन्स की जो आपका घर है उसके चारों तरफ जो आपके पास खाली जमीन है उसी का यूज करके उसी को प्रॉपर बना के और उसमें जो बेड तैयार करेंगे उसमें बस ये चीजों का ध्यान रखना है कि एक ही तरह के वेजिटेबल्स नहीं लगाने हैं उसमें, हर बेड में अलग अलग मीन्स की जो आप 7 डेज एक वीक में 7 डेज होते हैं ना, तो 7 डेज में जो आप एक 7 बेड जो तैयार कर रहे हैं तो हर बेड में हर तरह के वेजिटेबल्स होने चाहिए। कुछ जमीन के नीचे निकलने वाली सब्जियां हैं, कुछ क्रीपर्स हैं जो पेड़ के ऊपर होने वाले हैं, कुछ जो है आपके लटकने वाले हैं वेजिटेबल्स, तो इस तरह से हर तरीके का ये वेजिटेबल्स जो यूज करेंगे तब जाके वो आपके बॉडी के लिए हेल्दी रहेगा और इस तरह का यूज करना चाहिए।
2: जी धन्यवाद मैम। तो मैम ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जिनके पास मैम जमीन की जो कमी होती है मैम, जैसे कुछ लोग फ्लैट्स में रहती है, तो मैम क्या वो जो है गमलों या फिर छत में पोषण वाटिका कर सकती है?
0: हाँ कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जो पोर्च है या जो उनके पास ओपन एरिया है वो कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और उसमें वो पॉट्स जो है थोड़ा चौड़े शेप के वो लेके उसमें जो है उगा सकते हैं।
2: जी तो मैम जैसे हमारे तवंग के क्षेत्र में अलग अलग मौसम में भी अलग अलग किस्म के फल या सब्जियां उगाते हैं, तो मैम एक पोषण वाटिका में ऐसी कौन कौन सी मौसमी सब्जियां फल या औषधीय पौधे है जिन्हें उगाना उपयुक्त होगा मैम?
0: अगर आप तवंग के बारे में बात करना चाहेंगी तो मैं उसके बारे में आपको विशेष करके बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारे विलेज में जाके विजिट किया है, देखा है, तो उसमें फार्मर्स क्या करते हैं कि कोई एक वेजिटेबल्स मीन्स की अगर कहीं पे रेडिश लगा रहे हैं तो केवल रेडिश लगा रहे हैं उनके पूरे किचन गार्डन में, चिली तो चिली ही पूरा लगाया जा रहा है, फिर आपका ये लाई पत्ता है तो केवल लाई पत्ता लगाया जा रहा है। तो मैं उनको अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर वो कोई भी लीफी वेजिटेबल्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लगाना चाहे तो उसमें आप सरसों का पत्ता भी लगाइए, पालक भी लगाइए, इस तरह का मिक्स करके अगर लगाएंगे, लेट्यूज लगाइए, इस तरह के मिक्स करके लगाने से आपकी बॉडी में पोषक तत्व जो लीफी वेजिटेबल्स से मिलेगा या जमीन के नीचे वाली सब्जियों से मिलेगा जो लटकने वाली वो तब जाके आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। तो कोशिश करिए केवल एक तरह के वेजिटेबल्स अपने किचन गार्डन में मत लगाइए, वो फिर आपका न्यूट्रिशन किचन गार्डन नहीं होगा।
2: जी धन्यवाद मैम। जब कोई जो है मैम किचन गार्डनिंग करते हैं यानी पोषण वाटिका करते हैं तो ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो अपने पोषण वाटिका में रासायनिक खाद या कीटनाशक यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर लेते हैं जो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती, तो मैम इसके अलावा ऐसे कौन से प्राकृतिक और कम लागत वाले विकल्प हो सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो?
0: सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितना भी तरह का न्यूट्रिशन किचन गार्डन है उसमें केमिकल का यूज बिल्कुल नहीं करना है
2: जी।
0: वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तब वो न्यूट्रिशनल कहाँ रह गया
2: जी,
0: ठीक है? तो आप न्यूट्रिशनल किचन गार्डन की अगर बात कर रहे हैं तो केवल उसमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करने हैं, आपके जो नीम बेस्ड प्रोडक्ट है वो यूज करना है उसके लिए, प्लस आपका वर्मी कंपोस्ट खाद खुद का जो किचन से वेस्ट जो आपका वेजिटेबल्स का फ्रूट्स का निकल रहा है या जो उसका पानी का डायरेक्शन जहाँ पे आप वेजिटेबल्स को वॉश कर रहे हैं या अपने अनाज को धुल रहे हैं, दाल को चावल को बनाने में जो पानी निकल रहा है वो कोशिश करिए कि आपके उसी खेती में जाए जहाँ पे आपने न्यूट्रिशन किचन गार्डन किया है, तो वो आपका हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा और ये आपका नेचुरल फर्टिलाइजर्स रहेंगे।
2: जी बहुत धन्यवाद मैम। मुझे बिल्कुल यकीन है कि आपकी जो सुझाव है हमारे श्रोता

0: के लिए जरूर लाभदायक रही होंगी। तो मैं चाहूंगी कि आगे का वार्तालाप मेरे साथी खंडू पेमा जारी रखे।
1: जी मैम, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि पोषण युक्त बागवानी जो है वो करने से एक महिला को, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, उन्हें सशक्त बनाने के लिए कैसे मददगार है।
2: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे। और वुमेन को सशक्त बनाने के लिए इसका बहुत अहम भूमिका है न्यूट्रिशन किचन गार्डन का। सबसे पहले तो वो खुद का हेल्थ उनका बहुत अच्छा रहेगा, इस तरह की वो हेल्दी जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन करेंगे और अपनी जो पूरी फैमिली है उसको वो इस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो खिलाएंगे उससे बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा जो भी सरप्लस वेजिटेबल्स है जो मार्केट में ले जाके सेल कर रहे हैं, और प्लस वो एग्जाम्पल सेट करेंगे अपने आसपास के लिए और लोगों के लिए कि किस तरह से उसने न्यूट्रिशन किचन गार्डन करके प्लांट वे में बना के, प्लांट वे में उगा के सब्जियों को और खुद भी खाया है और फार्मर्स के बीच में ले जाके सेल भी किया है, जो आसपास के एरिया में लोग नहीं जानते होंगे वो भी जानेंगे, उससे उनका चौमुखी विकास होगा।
1: जी जी मैम, हमें बिल्कुल यकीन है कि हमारी जो महिला श्रोताएं हैं वो इस बात से जरूर प्रेरित होंगे। तो इसी के साथ हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि क्या आपके पास कोई ऐसा प्रेरणादायक उदाहरण है जहां किसी परिवार या स्वयं सहायता समूह ने इस अवधारणा को सफलतापूर्वक अपनाया हो।
2: अभी यहाँ पे जो एग्जांपल है, अभी न्यूट्रिशन किचन गार्डन पे मैं 1 ईयर से काम कर रही हूँ, जिसमें जो मुझे दिखाई दी है वो यहाँ पे एक है, ये मिसेज नवांग चुजन जो इस पे काम कर रहे हैं, उनके पास जो वेजिटेबल्स है और जो वो ग्रो करते हैं वो अलग अलग है, एक ही तरह के क्रॉप वो नहीं लगाती हैं, नहीं यूज करती हैं। और मैडम का FPC है खुद का, वो उसके फाउंडर मेंबर है, तो वो एक अच्छा एग्जांपल है फार्मर्स को देखने के लिए, वो वहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं।
1: जी मैम, और इसी के साथ हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस के छात्राएं हैं उन्हें पोषण युक्त बागवानी से कैसे जोड़ा जा सकता है ताकि उनमें पोषण और प्रकृति के प्रति भी जागृत हो।
2: जहाँ तक न्यूट्रिशन किचन गार्डन की बात आती है तो उनके सिलेबस में एक लेसन होना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन किचन गार्डन होना चाहिए। उसके अलावा उनका जो न्यूट्रिशन का कोई अगर चैप्टर होगा तो वो फिर एक ट्रेनिंग उनको दिया जा सकता है, फिर उनको डेमोंस्ट्रेशन के थ्रू बताया जा सकता है कि किस तरह से न्यूट्रिशन किचन गार्डन क्या है, किस तरह करने से उनको बेनिफिट होगा। और बहुत जरूरी है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो गया या एडोलसेंट गर्ल बॉय जो भी है, इस एज में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि न्यूट्रिशन किचन गार्डन क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइफ में कितना महत्व है, ये अगर उनको आइडिया हो गया तो अपने स्कूल से ये नॉलेज पाके वो अपने घर पे जाके पेरेंट्स को बताएंगे, उसके इम्पोर्टेंस को बताएंगे, तो जाके फिर हेल्दी फैमिली तैयार होगी।
1: जी जी बहुत धन्यवाद मैम। तो इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आगे की वार्तालाप जो है वो इंजन चिल्ड्रन जारी रखे।
0: जी धन्यवाद। तो मैम, जैसे कि आप जो है कृषि विज्ञान केंद्र के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत है, तो मैम हम जानना चाहेंगे कि क्या पोषण वाटिका को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से या कृषि विज्ञान केंद्र या किसी अन्य संस्थानों द्वारा कोई योजना या ट्रेनिंग दी जाती है, यानी किसी प्रकार की सहायता, अगर हाँ तो वो आम जनता यानी आम लोगों तक कैसे पहुँचती है।
2: बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है, मैं भी और भी लाभ इससे उठाएंगे फार्मर्स हमारे। जो हमारा KVK है, कृषि विज्ञान केंद्र, इसमें मैं जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट इन कम्युनिटी साइंस हूँ, इसमें है कि मेरा जो ऑन फार्म ट्रायल है वो न्यूट्रिशनल किचन गार्डन पे है। इसमें हम फार्मर्स को सेलेक्ट करते हैं और पहले फार्मर्स को थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल सीड, जो सीजनल वेजिटेबल सीड है, वो उपलब्ध कराते हैं, देते हैं, और फार्मर्स को बताते हैं किस तरह से आप लाइन स्विंग करिए, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, रो टू रो कितना होना चाहिए, वो फार्मर्स को देके और फिर उनको उन वेजिटेबल्स का नॉलेज भी देते हैं कि ये खाने से उनको हेल्थ में क्या सुधार होंगे, कैसे उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो इस तरह से ये कृषि विज्ञान केंद्र में काम कर रहा है और उनको थोड़ा थोड़ा अमाउंट में वेजिटेबल सीड प्रोवाइड करता है सीजनल, और फिर उनको लगाने के तरीके बताता है, स्विंग करने के तरीके बताता है, कैसे प्लांट का ये नर्सरी करना है, कितने दिन पे उसको ट्रांसप्लांट करना है, ये सारी चीजें बताते हुए, और मिक्स क्रॉपिंग करना है, ये सारी चीजें उनको बताता है कि हम लोग का जो संस्था है, और उनको

0: थोड़े अमाउंट में वेजिटेबल सीड भी प्रोवाइड करता है।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये बातें हमारे श्रोताओं के लिए जरूर जानकारीदायक रही होंगी। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर पहुंचे हैं। तो अंत में हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को संदेश दे ताकि वे इस पोषण वाटिका को अपनाएं और अपने घर को हरा भरा व पोषक बनाएं।
0: मेरे तरफ से तमाम वासियों को यही संदेश है कि आप जितना हो सके सबके सब न्यूट्रिशनल किचन गार्डन, जो अपने आसपास के सराउंडिंग जो खाली एरिया है उसमें किचन गार्डन तो सबको ही करता है, लेकिन एक राइट डायरेक्शन में आपको कैसे करना है वो चीज बातों का ध्यान रखें। कोई भी प्लांट लगाते वक्त वो प्लांट हमारे लिए कितना हेल्दी होगा इस बात का बहुत ध्यान रखें। सीजनल वेजिटेबल्स लगाएं और कोशिश करें नया जो वैरायटी आ रही है, नया जो सीड आ रहा है या जो कोई नया वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस हो रहा है उसको लगाने की कोशिश करें और हर तरह का वेजिटेबल्स लगाएं। मेरा यही कहना है उनसे, केवल एक तरह का वेजिटेबल्स लगा के वही खाने से उनका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। मिक्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करें तो वो हेल्दी रहेंगे।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिव्या जी, आपने किचन गार्डनिंग के बारे में बेहद सरल, व्यावहारिक और उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपकी बातों से हमें यह समझने को मिला कि किचन गार्डन सिर्फ पौधे उगाने की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली, आत्मनिर्भर और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपका बहुमूल्य समय देने और इतनी सहजता से ज्ञान बांटने के लिए हम आकाशवाणी तवंग की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमें विश्वास है कि आज का यह संवाद हमारे श्रोताओं को प्रेरित करेगा और वे भी अपने घरों में किचन गार्डन की शुरुआत करेंगे और एक स्वस्थ जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। इसी के साथ फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: थैंक यू सो मच।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि विज्ञान केंद्र तवांग की होम साइंस विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या पांडे से पोषण वाटिका विषय पर हुई भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता थे कुमारी खांडू पेमा और कुमारी तिनसिन चौटन। इसके साथ ही कृषि संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण अब समाप्त होता है।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
5: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
2: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है वीर सैनिकों पर आधारित कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का पहला नगमा सुनिए, चलते चलते, फिल्म से अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की आवाजों में, बोल जावेद अख्तर के और संगीत आदेश श्रीवास्तव का।

में पेश हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में मैं हूं ना फिल्म के इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सवारा है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का अंतिम नगमा सुनिए, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म कयामत से कयामत तक, बोल मजरू सुल्तानपुरी के और संगीतकार आनंद मिलिंद।

कयामत से कयामत तक फिल्म के इस गीत के साथ ही वीर सैनिकों पर आधारित कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

याकू का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार को 2026 के लिए किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में 42 वर्षों की समर्पित सेवा, विद्यालय के विकास और विषय भाषा को बढ़ावा देने के उनके योगदान के लिए उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रधानाध्यापिका तामी याकू को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और जिला शिक्षक पुरस्कार भी प्राप्त है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर 2026 को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। इस वर्ष 27 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ और 6 केंद्र संगठनों के 48 उत्कृष्ट

0: विद्यालय शिक्षकों को इस सम्मान के लिए चुना गया है। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। पापुलपारा जिले के लिए एसआईआर 2026 के इलेक्ट्रल रोल ऑब्जर्वर ईआरओ विवेक एचपी ने आज यूपीआई में आयोजित एक बैठक के दौरान जिले में चल रहे निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 की समीक्षा की। निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनता के विश्वास के महत्व पर जोर देते हुए ईआरओ विवेक एचपी ने कहा है कि निर्वाचक नामावली की तैयारी से लेकर मतदाता कराने तक चुनावों की विश्वसनीयता के लिए जनता का विश्वास बुनियादी आधार है। उन्होंने कहा कि एसआईआर नियमित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अलग है। इसमें बूथ लेवल अधिकारियों और बूथ लेवल एजेंट्स द्वारा व्यापक घर घर सत्यापन किया जाता है ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और निर्वाचक नामावली सटीकता तथा विश्वसनीयता बनी रहे। उन्होंने कहा कि इस गहन अभियान का उद्देश्य निर्वाचन कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुरूप अपात्र प्रविष्टियों की पहचान कर उन्हें हटाना भी है। बूथ लेवल अधिकारियों के सराहनीय प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सभी बीएलओस और बीएलएस के दावे और आपत्तियों की सुनवाई प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया ताकि किसी भी परेशानी का समय पर निवारण हो सके और बाद के चरणों में किसी भी तरह की जटिलता से बचा जा सके। अरुणाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग खेल एवं युवा मामलों के सचिव आबुताइन ने अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय फिल्म निर्माताओं, कलाकारों, कंटेंट क्रिएटर्स और कहानीकारों से जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में भाग लेने और राष्ट्रमंच पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने का आह्वान किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस चैलेंज में कंटेंट क्रिएटर्स, ब्लॉगर्स, फिल्म निर्माता, फोटोग्राफर, विद्यार्थी, इन्फ्लुएंसर्स और वीडियो या ऑडियो के माध्यम से कहानी कहने में रुचि रखने वाले कोई भी व्यक्ति भाग ले सकते हैं। इस पहल के तहत जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य एवं केंद्र शासित स्तर पर 2,00,000 और राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक के नकद पुरस्कार जीतने का अवसर है। इसके तहत चयनित प्रतिभागियों को अपने कार्य को व्यापक राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने और अपनी रचनात्मक प्रतिभा के लिए पहचान हासिल करने का अवसर भी प्राप्त होगा। प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। असम राइफल्स ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में तिरप जिले के न्यू पानीदुरिया क्षेत्र से एनएससीएनआईएम के एक सक्रिय कैडर को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 31 वर्षीय वांगचान वांगसू के रूप में हुई है, जिसने खुद को एनएससीएनआईएम सेल्फ स्टाइल प्राइवेट बताया है। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने उसके कब्जे से एक पिस्तौल, एक मैगजीन और 32 mm के 5 लाइफ कारतूस बरामद किए। बरामद अन्य आपत्तिजनक सामग्री में 5,400 रुपए नकद, अलग अलग व्यक्तियों के 3 आधार कार्ड, एक मतदाता पहचान पत्र, फोन नंबर की एक सूची तथा चार्जर सहित एक टॉर्च लाइट भी शामिल है। और ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, अंजाव, तिराप और लोंगडिंग के लिए येलो, साथ ही नामसाई और चांगलांग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय नारा कोया। Prime Minister Narendra Modi will address young budding athletes and youth leaders during a nationwide initiative Khelo India Dialogue, Khel Ki Baat, Pradhan Mantri Modi Ke Saath. On Thursday, to mark National Sports Day 2026, the large-scale youth engagement program will be organized across more than 1,500 educational institutions throughout the country, bringing together young people, athletes, policymakers and representatives of educational institutions. IITs, IIMs, NITs, AIMS, leading medical colleges and universities will be among the educational institutions participating in the program. The initiative aims to provide young athletes and sports enthusiasts with a direct platform to share their ideas, suggestions and innovative thoughts on the future of India's sports and youth ecosystem. Headmistress of Government Secondary School G Sector Nahalagan Tame Yaku has been selected for the National Teachers Award 2026. She has been selected for the prestigious National Teachers Award 2026 for her 42 years of dedicated service in education, school development and promoting the Nisi language. Ms. Yaku is also a recipient of the Chief Minister's Excellence Award and District Teachers Award. President Draupadi Murmu will confer the National Teachers Award 2026 on September 5, 2026 at Vigyan Bhavan, New Delhi. This year,

सुखविंदर सिंह और अनुप्रिया चैटर्जी के इस नगमे के साथ ही कार्यक्रम देशभक्ति गीत अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का पहला फरमाइश किया है वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट चायबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप ने। आप सभी के फरमाइश पे पेश है कुर्बान फिल्म से उदित नारायण और अनुराधा पोतवाल का गाया गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आनंद मिलन ने।

अगला फरमाइश प्राप्त हुआ है पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोरा, कीर्ति अरोरा, भूमिका अरोरा और ममता अरोरा से दाग फिल्म के नगमे का। इस नगमे को गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। न्यूमधुंग तवांग से संगीत सरिंग और टाशी ड्रमाचू।

और ईटानगर से पासंग छोटन के फरमाइश पे सुनिए कमांडो फिल्म से विजय बेनेडिक्ट और अलीशा चिनाई का गाया नगमा, बोल अनजान के और संगीत बप्पी लहरी का।

अगला नगमा सुनिए वेस्ट जलालाबाद से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा के फरमाइश पर आपकी कसम फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम फरमाइश किया है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, मुरादाबाद दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने। आप सभी के फरमाइश पे प्रस्तुत है दो रास्ते फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया गीत, बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमे। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक जरूर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत और फिल्म का नाम अवश्य लिखें। इसके साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, आपसे कुछ पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 8 9। कृपया थोड़ी

0: नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट शक्ति प्रताप सिंह,
1: और हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगा हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ।
0: तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम स्पोर्ट्स हेडलाइंस के साथ। श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में ध्रुव जुरेल के नाबाद शतक की बदौलत भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की, जवाब में श्रीलंका की खराब शुरुआत।
1: भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनीजा ओपन शतरंज का खिताब अपने नाम किया।
0: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 27 अगस्त को खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे युवाओं को संबोधित।
1: और पुरुष हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड्स ने भारत पर 5-3 से जीत दर्ज की, भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर।
0: और सबसे पहले खेल खबरों में बात करते हैं क्रिकेट की। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की, जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं।
1: भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की शानदार शतकीय पारी खेली, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 63 रन की पारी खेली। इसके साथ ही ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में विदेशी सरजमी पर सर्वाधिक रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं।
0: जी हां, उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा। भारत के विशाल स्कोर के जवाब में श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम महज 8 रन पर 2 विकेट टीम खो चुकी है, और भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और मानव ने ये सफलताएं हासिल की हैं।
1: जी, और भारत इस श्रृंखला में 1-0 से आगे है। सिद्धार्थ, आज के दिन का जो पूरा खेल रहा, ध्रुव जुरेल आज के हीरो।
0: बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने आज एक शतकीय पारी खेली है, हालांकि आज के अगर हम दूसरे दिन के खेल पर नजर डालें तो आज खेल बारिश से प्रभावित रहा, और भारत की पकड़ को मजबूत तो एक तरफ ध्रुव जुरेल ने किया ही, दूसरी ओर भारत की आज जब शुरुआत हुई 300 पर 5 के स्कोर के आगे टीम ने खेलना शुरू

0: किया और पहले दिन 3 विकेट हासिल करने वाली अस्मिता फर्नांडो ने सारांश जैन के रूप में भारत को दिन का पहला झटका दिया। और आपको याद होगा शक्ति, जिस तरह से ऋषभ पंत कलाई में चोट के चलते रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, लेकिन सारांश के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए और जुरेल के साथ मिलकर उन्होंने पूरे सत्र के लिए बल्लेबाजी की।
1: जी बिल्कुल, और कह सकते हैं कि ये चोट जो है उनके हौसले नहीं तोड़ सकी, लेकिन जो टूटा मैदान पे वो एक महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड टूटा है, इसके बारे में भी सिद्धार्थ बताएं एक बार।
0: बिल्कुल, जिस तरह का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है ये वाकई में एक जबरदस्त रिकॉर्ड है। और अगर हम एक न्यूट्रल टेस्ट मैच की बात करें जहां पे आप अपने देश के बाहर खेलते हैं, जैसे कई बार होता है ना कि जब आप अपने देश में खेलते हैं तो उस समय जो सपोर्ट होता है फैंस का बहुत ज्यादा होता है, जब आप विदेशी धरती पर, जिसे हम न्यूट्रल मैच के नाम से जानते हैं, तो न्यूट्रल टेस्ट मैच में 2501 रन उन्होंने बनाए हैं जिसका औसत 41.68 है। और ये जो इतिहास रचा है पंत ने, इसके पहले एमएस धोनी का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। धोनी ने घर से बाहर खेलते हुए 2496 रन बनाए थे और उनका एवरेज 32.84 यानी 32.84 था। तो कहना होगा कि काफी अच्छा एवरेज है शक्ति।
1: जी बिल्कुल, काफी अच्छा एवरेज, और जिस तरह का खेल है और जो खेलने की शैली है ऋषभ पंत की, रिस्क लेते हैं, एक्सेलेट करते हैं अपनी पारी को, और वैसी ही पारी आज भी देखने को मिली। 90 से कम गेंदें खेली और 63 रन, जिसमें 2 शानदार छक्के भी शामिल थे, जिसके लिए ऋषभ पंत मशहूर हैं हमेशा।
0: जी हाँ, और यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दूं कि हमारे सुनने वालों के लिए, कि जिस तरीके से ऋषभ पंत, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी और तीसरे स्थान पर फारूक इंजीनियर रहे जिन्होंने 1209 रन बनाए न्यूट्रल वेन्यू पर, उस चौथे स्थान पर सैयद किरमानी और फिर किरण मोरे जो है वो 5वें स्थान पर हैं। तो इस तरीके से एक नया इतिहास तो आज रचा ही गया है, लेकिन इस इतिहास के साथ साथ जिस तरीके से आज का मैच हुआ है, ध्रुव जुरेल ने जो भारत को मजबूती दी है, तो बड़ा दिलचस्प होगा। और अगर हम देखें शक्ति, तो जिस तरीके से श्रीलंका के 2 विकेट फटाफट से गिर गए, तो एकदम से वो पारी कहीं ना कहीं लड़खड़ाई उनकी।
1: जी बिल्कुल, कह सकते हैं पूरी तरीके से लड़खड़ाई। और जब कल भारतीय गेंदबाज वापस उतरेंगे तो शायद ये जो 2 विकेट हैं उनके मनोबल में, उनकी गेंदबाजी में साफ झलकेंगे। और कल कामिल मिशारा होंगे जो अपना पहला मैच खेल रहे हैं, डेब्यू कर रहे हैं, तो देखता होगा कि भारतीय टीम अगर बारिश विलन नहीं बनती है तो कितना जल्दी श्रीलंका को निपटाने का काम करती है।
0: बिल्कुल, तो कई बार ऐसा रहता है ना टेस्ट मैच में कि कहीं ये ड्रॉ ना हो जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए, लेकिन जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन टीम इंडिया ने किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, देखना होगा कि श्रीलंका किस तरीके से 2 विकेट गंवाने के बाद कमबैक करता है।
1: जी बिल्कुल, और भारत को उम्मीद होगी कि किस तरह से इस मैच में अपनी पकड़ तीसरा दिन समाप्त होते होते और मजबूत कर ली जाए।
0: बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर होगी और स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में देंगे हम आपको एक एक अपडेट। बढ़ते अगली खबर की ओर, भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी के नागी कानिजा में हुए प्रतिष्ठित कानिजा ओपन में ग्रुप ए का खिताब अपने नाम कर लिया है।
1: प्रणेश ने रोमांचक 9वें राउंड के बाद टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: प्रणेश ने 9 राउंड में 7 अंक हासिल किए और 3 अन्य खिलाड़ियों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान साझा किया। उन्होंने बेहतर ट्राई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता, जबकि इसराइल की ओर ब्रोनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रे वोलोकिटीन और भारत के कार्तिक वेंकट रमन क्रमशः 2रे, 3रे और 4थे स्थान पर रहे। प्रणेश की ये जीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शतरंज के बढ़ते दबदबे का एक और बेहतरीन उदाहरण है। तमिलनाडु के कराईकुडी में जन्मे मुनीरथिनम प्रणेश स्टॉकहोम में रिल्टन कप जीतने के बाद जनवरी 2023 में वे भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने थे। प्रणेश ने साल 2020 में दिल्ली जीएम ओपन में इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल और पहला जीएम नॉर्म हासिल किया। इसके बाद उन्होंने साल 2023 में रिल्टन कप जीतकर भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने। साल 2025 में प्रणेश ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में चैलेंजर सेक्शन जीता था। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: जी हाँ शक्ति, अगर हम देखें तो प्रणेश ने कुल 9 राउंड में 7 अंक हासिल किए, 4 खिलाड़ियों के बराबर अंक होने के बावजूद बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर उन्हें विजेता घोषित किया गया। उनके साथ और ब्रॉन्स्टीन, एंड्रे वोल्वोकिटिन और भारत के कार्तिक भी 7 अंकों पर रहे, लेकिन जिस तरीके से उनको टाई ब्रेक में अंक मिले,

0: तो वो विनर घोषित हुए।
1: जी बिल्कुल, और इस पूरे पूल में देखा जाए 250 से अधिक खिलाड़ी थे और भारतीय खिलाड़ी पहला स्थान हो दूसरा स्थान हो इसके बाद भी नजर आते हैं आपको इस सूची में लगातार। और महज इस प्रतियोगिता की बात क्यों की जाए, भारतीय शतरंज खिलाड़ी भारतीय ग्रैंड मास्टर जहां भी उतरते हैं जो एक लय शुरू हुई थी विश्वनाथन आनंद से वो आज तक लजिसी बहुत अच्छे ढंग से ट्रांसफर होती हुई चेस के कोर्ट पे नजर आती है।
0: बिल्कुल, ये भारत का दबदबा अभी भी कायम है। प्रणेश की अगर हम देखें तो मौजूदा फिडे रेटिंग 2673 है और अगस्त 2026 की रैंकिंग में वो दुनिया के 44वें नंबर के खिलाड़ी हैं। वो पहले से ही विश्व शतरंज के युवा सितारों में गिने जाते हैं और अब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैदान में ये खिताब जीतकर एक बार फिर भारतीय शतरंज की ताकत दिखाई है।
1: जी बिल्कुल, ये युवा सितारा जो है अब एक नई लौ की तरफ बढ़ चुका है और दुनिया ने शायद एक और नए सितारे का नाम अब याद करना शुरू कर दिया है।
0: जी हाँ, तो ये तो खबर थी शतरंज से। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 27 अगस्त को देश भर में एक विशाल कार्यक्रम खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करेंगे।
1: जी बिल्कुल, ये वर्चुअल संबोधन होगा और इस पहल के द्वारा देश भर में 1500 से अधिक स्थानों पर युवाओं को खिलाड़ियों को और शिक्षण संस्थान एक साथ आएंगे। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: ये कार्यक्रम खेल प्रेमी युवाओं और भारत के नीति निर्माताओं के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक प्रयास है जिससे युवाओं को अपने विचार अनुभव और सुझाव साझा करने का अवसर मिलेगा। युवा खेल और युवाओं से जुड़े चार मुख्य विषयों पर अपने विचार सुझाव और नए आइडिया साझा करेंगे। पहला, बेहतर सुविधाएं कोचिंग और मौके जमीनी स्तर तक पहुंचाकर खेल इकोसिस्टम को मजबूत करना। दूसरा, वैज्ञानिक तरीके से टैलेंट की पहचान और एथलीट के विकास पर ध्यान देते हुए 2036 ओलंपिक के लिए टैलेंट को तैयार करना। तीसरा, युवा नेतृत्व को मजबूत करना और शासन प्रशासन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना। चौथा, विकसित भारत के लिए युवाओं का सशक्तिकरण जिसमें भविष्य के लिए जरूरी स्किल्स वॉलंटियरिंग और राष्ट्र निर्माण के मौके शामिल हैं। इस कार्यक्रम के जरिए मिले सुझाव सीधे पॉलिसी बनाने वालों और खेल इकोसिस्टम तक पहुंचाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश भर के युवाओं को संबोधित करेंगे। मनिका बत्रा, दीपा कर्माकर, साइना नेहवाल, गगन नारंग, सृजेश, मैरी कॉम, बाईचुंग भूटिया, गोपीचंद, अंजू बॉबी जॉर्ज, कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू, पीटी उषा और जाने माने क्रिकेटरों समेत भारत के प्रमुख खिलाड़ी और पदक विजेता युवाओं से सीधे बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और राज्यों के खेल मंत्री हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित भारत युवा लीडर संवाद क्विज आयोजित की जाएगी। युवाओं को माई भारत पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
0: जी हाँ, खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ ये जो खेलो इंडिया संवाद का आयोजन किया जा रहा है, शक्ति अगर हम देखें तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो खेलों को लेकर बहुत ज्यादा हमेशा उनके अंदर उत्साह रहता है और खिलाड़ियों से एक व्यक्तिगत रूप से भी कनेक्ट रहते हैं। कोई भी टूर्नामेंट हो, कभी भी हो, तो एक जिस तरह से एक बदलाव आया है पिछले 10 सालों में, अगर हम ये कहें कि खेल की दुनिया में भारत को जिस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिला है, जिस तरह की योजनाएं आई हैं, तो उसी के तहत जो ये संवाद हो रहा है खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ, सबकी नजर इस पर लगी है शक्ति।
1: जी बिल्कुल, आपने प्रधानमंत्री के संवाद और लगाव की बात की, मुझे बार बार वो लम्हा याद आता है जब भारतीय टीम विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में अनफॉर्चुनेटली एक हार मिली थी और प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम तक गए और प्रत्येक खिलाड़ी से मिलना। जीत में आपके साथ सब खड़े होते हैं लेकिन कोई आपके साथ हार में खड़ा है तो बताता है कि समर्थन क्या है। हम इस जब सूची को देखते हैं खिलाड़ियों की, यहाँ पे बैडमिंटन की साइना नेहवाल है, जिमनास्ट से दीपा करमारकर हैं, गगन नारंग शूटिंग से आते हैं, श्रीजेश हॉकी से हैं, तो अब भारत वन मैन शो वाला देश नहीं है सिद्धार्थ। हर खेल में, हर कोर्ट में, हर मैदान में हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और किस तरीके से प्रधानमंत्री जी इस पर संवाद करते हैं, लोगों के साथ चर्चा करते हैं। और ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 27 अगस्त को इसका वर्चुअल आयोजन किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, एम्स्टर्डम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही विश्व कप में भारत का अभियान समाप्त हो गया है। और शक्ति अगर हम देखें

0: तो पूरे इस स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में स्पेशली आपने इस पूरे विश्व कप को लगातार हम कवर करते आए हैं और हर एक इवेंट पे हमारी नजर थी। आज का दिन थोड़ा मायूसी भरा था क्योंकि एक बड़े अंतर से हम जीतने की कोशिश कर रहे थे।
1: जी बिल्कुल, और पहली जीत जो भारत ने विश्व कप में दर्ज की वेल्स पर 3-1 से, और वो पाकिस्तान की जीत शायद वर्षों वर्षों याद रखी जाएगी। एक सपना था कि 50 साल बाद पदक जीतेंगे, लेकिन आज हम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुए। जैसा आपने बताया कि सेमीफाइनल का भारत का अभियान समाप्त हुआ, लेकिन उम्मीद है आने वाले समय में और बड़े आयोजनों में भारतीय टीम जो है वापस, जिसके लिए भारतीय हॉकी जानी जाती है, उस प्रदर्शन को दोहराएगी।
0: बिल्कुल, तो जिस तरह से आज पूरा ये मैच हुआ है, अब फिलहाल जो है सेमीफाइनल के लिए भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। और अब बात कर लेते हैं टेनिस की। टेनिस में आर्थर फिल्स ने अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को हराकर सिनसिनाटी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। यह फिल्स का पहला एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब है।
1: वहीं महिलाओं की में कोको गॉफ ने हमवतन जैसिका पेगुला के खिलाफ जीत दर्ज करते हुए अपना दूसरा सिनसिनाटी ओपन टाइटल दर्ज किया है सिद्धार्थ, और बेहद सरल मुकाबला रहा कोको के लिए, 6-2 6-4 से जीत दर्ज की है उन्होंने।
0: बिल्कुल, और सिनसिनाटी ओपन की अगर हम बात करें तो यूएस का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। 18 सितंबर 1899 में इसकी शुरुआत हुई थी। यूएस में यूएस ओपन और इंडियन वेल ओपन के बाद तीसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। हालांकि श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। बातें तो शक्ति बहुत सारी हैं, लेकिन अब फिलहाल हमें लेनी होगी इजाजत।
1: जी बिल्कुल, और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पे अपनी राय अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्सकैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और सिद्धार्थ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। उड़ीसा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डिकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
3: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
2: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
4: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
3: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छा

0: कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
1: We are a young country.
2: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: With a large domestic market.
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
1: We have free trade agreements or preferential market access.
2: भारत को $70 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3,400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
3: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाएं। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040

0: तक रासायनिक क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जलभराव, घरों को नुकसान और नदियों व नालों में जलस्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केंदुझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2.60 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 रुपए पर बंद हुआ।
0: कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की।

0: जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारत ये टीम 7वें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Russian President Vladimir Putin discuss ways to strengthen India-Russia ties. President Putin offers to increase fertilizer supplies. National Security Advisor Ajit Doval arrives in Peking for 25th India-China boundary talks. India calls for diversified and adequate international financing to support land restoration and build drought resilience. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and Madhya Pradesh tomorrow. Incessant rain triggers waterlogging and rising river levels in Odisha. And in Colombo cricket test, centuries by Dhruv Jurail and Devdutt Padikkal power India to 503 against host Sri Lanka. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. The Indian Ambassador to Russia, Vinay Kumar, and Joint Secretary ERS, Mayank Singh, were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
2: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
1: The External Affairs Minister conveyed to Mr. Putin that Prime Minister Modi looks forward to meeting him at the SCO summit and to welcoming him to India for the BRICS summit. Speaking during a meeting, the Russian President offered to increase fertilizer supplies to India, saying Moscow is taking steps to support Indian farmers and the country's agricultural sector. He also highlighted the growth in trade between Russia and India this year. The Russian President credited Prime Minister Narendra Modi for the growing partnership between New Delhi and Moscow. He said, External Affairs Minister's visit underscores the level of relations that has been established between Russia and India for decades. He said the two countries

0: In a social media post, Mr. Trump accused Canada of imposing high tariffs on American farmers and agricultural products. The announcement came after trade negotiations between Washington and Ottawa broke down, with Canadian Prime Minister Mark Carney describing US's last-minute proposed terms as unfair and uneconomic. And now, before we end, the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and Russian President Vladimir Putin discuss ways to strengthen India-Russia ties. President Putin offers to increase fertilizer supplies. National Security Advisor Ajit Doobhal arrives in Beijing for 25th India-China boundary talks. India calls for diversified and adequate international financing to support land restoration and build drought resilience. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and Madhya Pradesh tomorrow. Incessant rain triggers waterlogging and rising river levels in Orissa. And in Colombo cricket test, centuries by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal power India to 503 against host Sri Lanka. That's all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे न्यूज एट 9। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। चलिए अब आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। कल दोपहर 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम मेरी बात। साप्ताहिक मोनपा कार्यक्रम दांगपोक समा कल शाम 5:35 पर। फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से कल शाम 7:11 पर और साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग शाम 7:25 पर। जी हां श्रोताओं, तो ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों की संक्षिप्त विवरण। अब समय हो चला है आप श्रोताओं से विदा लेने का। आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर 2 बजे अंग्रेजी में समाचार के साथ। तब तक के लिए